0: 1197 கிலோஹெர்ட்ஸின் இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு மீண்டும் நாளை காலை மணி 5:50 இனிதே ஆரம்பமாகும். வழக்கமான எமது நிகழ்ச்சிகளை பண்பலை 102.6 தொடர்ந்து கேட்டு மகிழலாம். வணக்கமே.
1: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking calls from you on market related queries, but do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
2: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. श्रोताओं, आज शनिवार है. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं. हमारा नंबर है 2331-4444. दूसरा नंबर है 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. श्रोताओं, आज हमारे साथ चर्चा के लिए और आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: वार्म वेलकम शरद.
3: धन्यवाद निखिल, धन्यवाद राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
2: और सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर.
1: Benchmark domestic indices decline for the fourth consecutive week. Sensex and Nifty falls around 1%. US stock market indices display mixed performance this week. And global crude oil prices surge over 9% during the week.
2: घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट का रुख. सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 1% नीचे आए. अमरीकी शेयर बाजार में इस सप्ताह मिला जुला असर देखा गया और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में इस सप्ताह के दौरान 9% से अधिक का उछाल.

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार इस सप्ताह भी गिरावट दर्ज हुई. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने सशक्त घरेलू आर्थिक आंकड़ों के असर को सीमित किया. इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 750 अंक यानी 1% गिरकर 76,515 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 278 अंक यानी 1.1% नीचे आकर 23,898 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में इस सप्ताह मिड कैप सूचकांक 1.5% गिर गया, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप सूचकांक 20,187.80 के नए उच्च स्तर पर पहुंचा और अंत में लगभग सपाट कारोबार के साथ बंद हुआ. सेक्टर के हिसाब से देखें तो अगस्त में ऑटोमोबाइल की अच्छी बिक्री के बावजूद निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 4% की गिरावट आई. निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.6% नीचे आए, जबकि निफ्टी मीडिया, हेल्थ केयर और FMCG इंडेक्स में भी 2-2% की सुस्ती देखी गई. हालांकि निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में इस सप्ताह 1% की बढ़त दर्ज हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशकों की संपत्ति में कमी आई. BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.4 लाख करोड़ रुपए घटकर 490 लाख करोड़ रुपए के स्तर से नीचे आ गया. फॉरेक्स मार्केट में भारतीय रुपया इस सप्ताह 90 पैसे मजबूत हुआ और अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.49 रुपए पर बंद हुआ. और इस बीच हमारे साथ मुंबई से हमारे आज के पहले श्रोता परिमल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर. परिमल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए.
2: जी नमस्कार, मार्केट मंत्री सभी टीम को नमस्कार.

0: और एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये किसान को लेके, जैसे कि बॉम्बे में थाने में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लगभग 30 इयर्स हो गए मैं रह रहा हूँ
1: जी,
0: और मेरा नेटिव प्लेस है वेस्ट बंगाल, जहाँ से सिंगूर टाटा नैनो हुआ था। तो मैं आजकल देख रहा हूँ कि अभी वहाँ पे किसान को जो, हम लोग किसान का जो गवर्नमेंट का स्कीम है आय दुगना करने के लिए, ये जो स्कीम चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 30 to 40 इयर्स मेरा, मतलब मैं देख के आ रहा हूँ, मेरा पिताजी भी किसान ही थे, तो अभी वहाँ पे 3 रुपए पर किलो भी पोटैटो बिकता नहीं है, और महाराष्ट्र में हम लोग यह 25 to 30 रुपीज पर किलो हम लोग खाते हैं इधर बॉम्बे में, परचेज करते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों होता है, और ये प्रॉब्लम होने से किस तरीके से गवर्नमेंट, मतलब किसान का आय दुगना होगा, क्योंकि इससे मेरा एक ओपिनियन भी इसमें है कि गवर्नमेंट इसमें जो रेल ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कॉस्ट भी कम हो और एक राज्य से दूसरे राज्य में किसान भी आसान से लेके आ पाए, इससे किसान का जो मेहनत किया हुआ जो फल है ना, उसको ऑटोमेटिकली उसको खुद का मेहनत से मिल जाए, ना कि गवर्नमेंट को एवरी ईयर में उसको 10,000, 6,000, 8,000, 10,000 देने से अच्छा उसको एक रास्ता दिया जाए।
1: परिमल जी, बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है पिछले कई सालों में, आपने ठीक कहा। देखिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए, सरकार प्रतिबद्ध है, बहुत से राज्यों में बढ़ी भी है, और किसान सम्मान निधि जो इंट्रोड्यूस किया गया वो भी इसीलिए किया गया। आपका जो एक सवाल का हिस्सा है वो बहुत ही काम का है, और मैं भी अक्सर इसको कहता हूँ कि किसान कम कीमत लेकर परेशान होता है और ग्राहक जो है वो महंगी कीमत लेकर परेशान होते हैं, तो बीच में जो तंत्र है, बीच में पूरा सिस्टम है, और मैं राजेश और निखिल की भी इसमें इजाज़त चाहूँगा कि बीच में जो तंत्र है, जो बिचौलिए हैं इसमें परिमल, वो कहीं लाभ उठा जाते हैं। तो मुझे लगता है किसानों को सीधा हमें एपीएमसी से जोड़ना और मंडी समितियों को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, जिससे बीच में जो आड़ती हैं, जो बीच में जो लोग हैं जो मुनाफा बीच में कमाते हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, इतनी लंबी परिमल बीच में चेंज है कि वो 3 रुपए की चीज 25-30 रुपए की ग्राहक के हाथ तक पहुंचती हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे इन बिचौलियों को, और सरकार जब किसान के संबंधित बिल लेकर आई थी तो सरकार की मंशा रही थी यही थी, दुर्भाग्यपूर्ण वो बिल पास नहीं हो पाए, पर अगर वो बिल पास होते तो शायद आज हम कुछ और परिस्थिति देख रहे होते। पर सरकार मुझे लगता है प्रतिबद्ध है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, और किसानों को भी मैं सलाह देना चाहूंगा परिमल, आप भी किसानों को बोलिए कि कोशिश करें कि बिचौलियों के ज्यादा वो उसमें घेरे में ना आए, और सीधा मंडी समिति तक या सीधा जहां पर उसको एक्चुअल रिटेल होता है वहां तक, जितने बिचौलियों की चेन कम होगी मुझे लगता है उतना किसान का मुनाफा हो सकता है।
2: From Bengaluru, we are joined in by NR Prasad. A warm welcome, Mr. Prasad.
3: Hi, good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bengaluru. Good evening, Rajesh Ji. Hello, Nikhil.
2: Hello.
3: Tanuj Ji, good evening, sir.
1: Good evening.
3: Just one question, but it has got a two subdivision questions.
1: Yeah.
3: Sir, I hold a large, mid, and a small cap, sir.
1: Yeah.
3: Whenever I book the profit, there are two things here.
1: Yeah.
3: What is the percentage to be sold? And what is the percentage of profit to be made? In turn, generally what I do when I do the profit booking, minimum of I beat the inflation of 5-6% and another 8-10, 12-14, whatever the available on that day. So that is the percentage of profit I book. How much to sell, that percentage of how much to sell, if it is a large cap or if it is a small cap, how much to hold and how much to sell. These are my two sub questions, sir.
1: Well, I got your question, Mr. Prasad. It's a very subjective question, because I need to, because we don't name here the, you know, the large cap and mid cap funds which you're holding. So unless we know the name, it's very hard for me to predict that how much more you're going to make profit on this. That's a $1 billion question, that where do you stand today? How long have you been holding? But I would suggest that, you know, I follow a principle called profit in the bank is better than profit in the books. So if you are getting a decent amount of profit, I would suggest you should book, because the markets, the way they have been behaving over the last couple of years, it's been a roller coaster ride. And I was looking at the Nifty returns, you know, over the last 2

0: ये जो सेमिकॉन टू का संदर्भ है आपके हिसाब से क्या इसकी जानकारी है सर आपके पास? धन्यवाद।
1: देखिए अमित, पहले तो ये हमें समझना होगा कि हम सेमीकंडक्टर में कुछ समय पहले तक थे ही नहीं, हमारा कहीं नाम ही नहीं था। भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया जब सेमिकॉन 1.0 आया, उसके बाद जब कुछ और यूनिट्स की परिकल्पना करी गई, प्राइवेट सेक्टर आया, सरकार ने सपोर्ट दिया, सरकार ने स्कीम निकाली, उसके बाद हम सेमिकॉन 2.0 पर आए जहां पर सरकार ने उसको और इम्प्रूव किया। इस समय मेरी जानकारी के हिसाब से करीब 6 से 7 यूनिट्स आपको इस साल भारत से सेमीकंडक्टर्स के कुछ निकलते हुए भी दिखेंगे और 6 से 7 यूनिट्स टोटल इन दी प्रोसेस है। तो मुझे लगता है हमारी हिस्सेदारी भले ही अभी 0.1% हो, पर क्योंकि अभी सारे यूनिट्स इंस्टॉलेशन स्टेज पर है, अपने जेस्टेशन पीरियड में है, जैसे ही यूनिट्स इंस्टॉल हो जाएंगे और 1-2 साल के अंदर फंक्शनल हो जाएंगे, आपको सारे यूनिट्स सामान बेचते हुए दिखेंगे। तो आई थिंक आई कॉल दिस अमित एज वर्क इन प्रोग्रेस। उस परिस्थिति से हम आज बहुत अच्छे हैं, जब हमारे यहां सेमीकंडक्टर बनाने का तो छोड़िए, फैक्ट्री लगाने का तो छोड़िए, यहां पर बात ही नहीं होती थी, हम तो आंख बंद कर इंपोर्ट करते थे। यह सही है कि आज भी इंपोर्ट करें क्योंकि अभी हमारी इतनी प्रोडक्शन यहां शुरू नहीं हुई है, पर आपको मैं एक आश्वासन दे सकता हूं कि भारत सेमीकंडक्टर में बहुत आगे जाने वाला है और हम ना केवल अपनी घरेलू जरूरतें इससे पूरी करेंगे बल्कि हम दुनिया के लिए बहुत बड़े एक्सपोर्टर निकल के आएंगे। अमित, यह ध्यान रखना चाहिए, आखिरी बात मैं बोल रहा हूं कि सेमीकंडक्टर का जो प्लांट होता है जिसको चिप हम बोलते हैं, उसको सेटअप करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है, तो समय लगता है। सहज पके सो मीठा होए, किसी ने कहावत बोली है, तो मुझे लगता है आप 1-2 साल और इंतजार करिए, अगले साल इसी समय इस प्रश्न को फिर करिएगा, तब इस परिस्थिति का हम आकलन करके और आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा। जी,
2: फ्रॉम दिल्ली वी आर जॉइंड इन बाय कैप्टन जगमल, अ वार्म वेलकम कैप्टन।
3: हां सर
2: जी,
3: सर मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार, कोहली साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार कैप्टन साहब।
3: हाँ सर, मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी ये सवाल पूछा था लेकिन वो बीच में रह गया था आधा
1: जी।
3: मैंने 2013 में एक 46 लाख की कोई प्रॉपर्टी फ्लैट खरीदा था
1: जी,
3: वो भी बैंक से, डिफॉल्टर्स का होता ना ऑप्शन
1: जी जी जी,
3: उसमें जी। पूरा सब अच्छा, और अभी मैंने मुझे बिका वो 38 लाख का।
1: अच्छा,
3: मुश्किल। तो उसमें जब हमने वो रिटर्न भरी
1: जी,
3: हेलो
1: जी जी जी,
3: हाँ जी, रिटर्न भरी तो उसमें वो कैपिटल लॉस वो पुराने फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट कर रहा है, और मैंने गूगल वगैरह में देखा, मैंने थोड़ा आपको याद आया होगा मैंने बात करी थी आपसे
1: जी,
3: तो जी। वो कह रहे गवर्नमेंट ने 2023 में
1: जी
3: 24 जुलाई को उसमें थोड़ा सा कोई ट्विस्ट कर दिया कि कैपिटल गेन तो आपको पुराने फॉर्मूले से मिलेगा लेकिन कैपिटल लॉस वो केवल जो सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस है
1: जी,
3: उसका डिफरेंस मिलेगा
1: जी जी जी,
3: जो कभी कहीं 80 लाख के करीब लॉस बन था वो करीब 8 लाख के करीब वो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है उसमें
1: जी जी जी।
3: अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने जुलाई में रिटर्न भरी थी
1: जी,
3: उसके साथ जो मेरी फैमिली की बाकी रिटर्न भरी थी उनका सबका वो आ गया फाइनल, पर रिफंड भी आ गया
1: जी,
3: ये जब से अब से उन्होंने होल्ड की हुई है
1: जी जी
3: उसमें भी।
1: चलिए कैप्टन साहब, आपने जो बात करी ये आप ये जिस का जिक्र कर रहे हैं निखिल राजेश, ये ग्रैंडफादरिंग पोजीशन प्रोविजन लाए थे क्योंकि एक डेट से ये जो जब से 12.5% किया टैक्सपेयर को ऑप्शन दी गई, पुरानी प्रॉपर्टीज पे आप इंडेक्सेशन लेके या विदाउट इंडेक्सेशन लेके आप कर सकते हैं, तो इसीलिए वो लॉस को ऐसे ले रहा है क्योंकि प्रॉफिट में क्या है कि कैप्टन साहब वो आपको 2 ऑप्शंस देता है कि आप इंडेक्सेशन लीजिए या आप 12.5% इंडेक्सेशन लेके आप 20% देंगे, पर अगर आप इंडेक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो वो 12.5% सीधा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करता है, परंतु ये लॉस में ऐसा नहीं है। जब आप लॉस है तो लॉस सीधा सीधा आप इसको, क्योंकि आपका 8 लाख का सीधा लॉस दिख रहा है तो वो लॉस उस तरीके से नहीं सीधा इसमें कैलकुलेट करा जाएगा, बिल्कुल 8 लाख जो दिख रहा है आपको वो इस समय सही दिखाई दे रहा है, इसी को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करिए या आप सेट ऑफ कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल है कि अभी तक आपका प्रोसेस होकर नहीं आया, तो जो नॉर्मली कैप्टन साहब ने देखा है जो जिन रिटर्न्स में कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है उनमें प्रोसेसिंग में थोड़ा वक्त लगता है, उसमें थोड़ा सा डिले होता है, बाकी की आपकी घर की जो रिटर्न्स हैं वो सिंपल रिटर्न्स होंगी, तो ये भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, इसका इंतजार करिए। अभी तो आपने जुलाई में फाइल ही किया है, अभी तो हम मुश्किल से 1.25 महीना ही वहां से चलकर आए हैं, तो आई थिंक बाय अक्टूबर नवंबर आप तक, और दिसंबर से पहले तो पक्का ही आ जाएगा, तो क्योंकि आपकी कैपिटल लॉस है इसलिए थोड़ा सा डिले दिख रहा है, बाकी प्रोसेस जो कैलकुलेशन

0: दिखा रहा है वो मुझे सही नजर आ रही है। जी
1: भिलाई से रवि हमारे साथ है। रवि जी आपका प्रश्न क्या है?
2: नमस्ते शरद सर, नमस्ते।
0: नमस्ते रवि जी।
2: अभी एक मिस्टर प्रसाद के जवाब से क्यों लेते हुए पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग वाली बात पे।
0: जी
2: कि मेरा जो है म्यूचुअल फंड पे करीब 2018 से जो है SIP करते जा रहा हूँ
0: जी,
2: और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग डबल से थोड़ा सा ऊपर ही है अभी।
0: अच्छा अच्छा।
2: और मुझे फंड्स की कोई भी जरूरत नहीं है अभी
0: जी,
2: और मैं ये SIP कंटिन्यू करके रखूंगा
0: जी,
2: तो क्या मुझे भी प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए कि मैं रख छोड़ सकता हूँ? क्योंकि मेरा ये सोचना है कि शायद रखूंगा तो री इन्वेस्ट होता रहेगा, तो और मतलब उसका प्रोग्रेशन अच्छा रहेगा बढ़ने का।
0: रवि बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये बहुत ही काम का सवाल है, मुझे लगता है बहुत लोगों का ही होगा। रवि मैं यहाँ सलाह दूंगा कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप बुक करते चलिए, क्योंकि आपने कहा आपका डबल से ज्यादा हो गया है, आप आगे कंट्रीब्यूट करते रहिए, पर पीछे जो प्रॉफिट हुआ है, आई थिंक जो अभी मैंने प्रसाद साहब को बोला था, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स, क्योंकि मार्केट जो है बहुत चैलेंजिंग, आप देख रहे होंगे पिछले एक दो साल से बहुत चैलेंज थ्रो कर रही है। आई मीन आई होप कि आपने जहां जिस फंड में किया हुआ है वो बहुत अच्छा फंड है, उसने अच्छे रिटर्न्स दिए, पर मार्केट जो पीछे कर रही है कोई गारंटी नहीं होती वो आगे करे, और जो आगे होने वाला होता है ये जरूरी नहीं कि पीछे ऐसा हुआ हो। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आप एक अच्छे प्रॉफिट में है, तो मैं सलाह दूंगा कम से कम आधे का आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी के आधे में बने रहिए और आगे करते रहिए। आप देखिए फिर वही बात आती है जो मैंने मिस्टर प्रसाद को कहा था, आप सुन रहे थे, कि बहुत स्पेसिफिक जवाब तो जब ही दिया जा सकता है जब हम यहाँ फंड्स के नाम ले, कौन से सेक्टर के हैं, सेक्टर स्पेसिफिक है, या आपने कोई हाइब्रिड लिया हुआ है, या आपने कोई लिक्विड फंड लिया हुआ है, कौन से फंड आपने लिए हुए हैं, डिफेंस में है कि FMCG में है, फंड्स के नाम क्या है, तो बाकी डिटेल्स। तो
3: क्वेश्चन इज दैट वंस इट बुक्स द प्रॉफिट व्हाट शुड इट डू विद दैट अमाउंट, शुड ही पुट इट इन FD, शुड व्हाट शुड ही डू?
0: मुझे लगता है कि आई थिंक राजेश व्हाट रवि शुड डू इज के अगर प्रॉफिट जब आप बुक करेंगे तो सवाल यह है कि पैसे का करें क्या, ये भी एक समस्या बन जाती है। लोग तो पैसे कहते हैं पैसे है नहीं। आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू नो यू कैन प्रोबेबली लुक एट सम गोल्ड ETFs एंड सिल्वर ETFs, ऑल्दो यू मस्ट पे अटेंशन टू द डिस्क्लेमर विच राजेश रेड इन द बिगनिंग दैट इन्वेस्टमेंट एडवाइस शुड बी टेकन फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट इफ आई वॉज यू रवि आई वुड हैव पुट सम इन गोल्ड एंड सिल्वर ETFs बिकॉज इट इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज एंड आई फील द लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स are looking very good. So some you can keep liquid in your FDs and all that, but maybe you don't need funds, but be very watchful. मुझे लगता है ये जो समय है ना रवि, ये पैसे कुछ पैसे को कई बार नहीं invest करना भी एक अच्छी strategy होती है, तो इसको रख के थोड़ा watchful रहिए। यहाँ से November तक जब तक अमेरिका में midterm poll है, काफी उतार चढ़ाव मुझे आगे दिखाई दे रहे हैं, बहुत roller coaster type ride दिख रही है, तो कुछ profit book करिए।
3: So what if he maintains this status quo?
0: Well, why I suggested him to book profit is because in case market takes another shocker और इनकी कुछ NAV नीचे आ जाती है, तो इन्होंने जो अभी तक डबल हो रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि जो प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है और अच्छा प्रॉफिट है, रवि मैं मानता हूं डबल होना एक अच्छा प्रॉफिट है, तो उसको कुछ बुक करिए, हो सकता है कम हो गया राजेश, तो फिर मैं देखिए मैं ये नहीं चाहता कि रवि का जो है जो ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है वो चला जाए। सो रवि आई वुड सजेस्ट बुक सम and reinvest in stocks ETF, keep some liquidity with you, be watchful, keep looking for opportunities and then jump in, you know, the moment you find. आप मार्केट मंत्रा से तो रेगुलर जुड़ते हैं, हम समय समय पर उसकी चर्चा करते रहेंगे। और हाँ राजेश और निखिल, प्रॉफिट बुक करें तो हमें रेडियो के माध्यम से एक आध लड्डू वड्डू अगर दे दे तो अच्छी बात जी।
1: और दिल्ली से ही हमारे आज के अगले श्रोता है सतपाल सिंह। सतपाल जी स्वागत है, सवाल पूछिए।
4: सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
4: मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार और सतपाल जी को नमस्कार।
0: नमस्कार
4: जी। सर जी मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ दिल्ली में, जो आपका गोल्ड सिल्वर चाहती है
0: जी,
4: और अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिक्स की जो समिट होने वाली है 12 सितंबर को
0: जी,
4: तो इसमें क्या डिस्कशन रहेगा, क्या इसके ऊपर जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है उसके ऊपर भी कोई डिस्कशन होगा, कुछ सोल्यूशन निकलेगा?
0: क्वेश्चन ये है। बिल्कुल डिस्कशन होगा जी।
4: हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निफ्टी के लिए क्या रहेंगे एक्सपर्ट 2-3 साल में?
0: चलिए पहला आपका ब्रिक्स से संबंधित है, ब्रिक्स पे जो मुझे एजेंडा रहने वाला है, यू नो राजेश आई थिंक निखिल भी अग्री करेंगे, डिफेंस ये जो युद्ध चल रहे हैं इन पे चर्चा तो अनिवार्य है, मुझे लगता है होगी ही होगी, क्योंकि ब्रिक्स या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि शांति, विश्व शांति बनी रहे। इसके अलावा ट्रेड पर, डिफेंस पर, ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर, और कुछ कल्चरल बात भी होगी, म्यूचुअल जो ट्रेड अग्रीमेंट्स

0: में भारत में भारत उसके ऊपर भी चर्चा होगी, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ब्राजील के साथ चर्चा हो सकती है, रशिया से हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है उस पर चर्चा हो सकती है, चाइना आई थिंक डिस्कस करना चाहेगा जो ब्लॉकेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुई हुई है, उसके लिए चाहेगा कि ब्रिक्स एक डिक्लेरेशन दे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलना चाहिए, चाहे वो ईरान की तरफ इशारा हो अमेरिका की तरफ इशारा हो, खुलना चाहिए दुनिया का ट्रेड नॉर्मल, और ये जो ट्रेड एम्बार्गोस लगाए जा रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, ये सब चर्चा होगी। मुझे लग रहा है दबी आवाज में या शायद अनऑफिशियली डिक्लेरेशन ना, एक ब्रिक्स करेंसी के ऊपर मुझे लगता है कहीं पर शायद एक बैकडोर डिस्कशन होगा, क्योंकि डॉलर ने जिस प्रकार से दुनिया में थोड़ी सी हलचल मचाई हुई है और डॉलर की वजह से बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हैं, मुझे नहीं पता ऑफिशियली को डिक्लेयर, क्योंकि पिछली ब्रिक्स समिट में जब डॉलर पर चिंतन हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी उखड़ गए थे, नाराज हुए थे, तो अब उनको नाराज तो कोई करना नहीं चाहेगा सीधे तौर पर, तो ये सब चर्चाएं होने की उम्मीद है। निफ्टी आपने पूछा 2-3 साल में, मुझे लग रहा है 2-3 साल में तो प्रॉस्पेक्ट बुरे नहीं है, पर थोड़ी सी सतपाल जी ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसको लेके मैं आजकल विशेष चिंतित हूं, पता नहीं मुझे लग रहा है मैं ज्यादा चिंतित हूं या सिचुएशन ऐसी बन रही है, क्योंकि रशिया नेटो के बीच में युद्ध और घमासान हो गया है, ईरान यूएस का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो ये थोड़ा सा इस पर नजर बना के रखिए, संभल के चलने का वक्त है ऐसा मुझे लगता है।
1: Moving on, Wall Street ended lower yesterday as hotter than expected employment data fueled concerns over a possible rate hike. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average declined 0.5%, the S&P 500 lost 0.4%, and the Nasdaq Composite fell 0.3%. For the week, Nasdaq rose 0.4%, S&P 500 eked out 0.1% gain, while Dow dropped 0.3%. On the economic front, total non-farm payroll employment increased by 1,62,000 in August, while the unemployment rate remained unchanged at 4.1%, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics. Sharad, a possible rate hike?
0: Well, the Truth Social post made by President Trump about Fed to, threatening that they should not increase the interest rates, else he's going to stop trading with the countries on which the U.S. runs deficit. I have my doubts, although the economic principle-based assessment says yes. But somehow I feel that it just may not be done, looking at the political situation in America at this point of time.
1: Okay. Global crude oil prices rose sharply over the week as disruptions around the Strait of Hormuz entered their seventh month, driving up the geopolitical risk premium in global energy markets. During the week, Brent crude November futures surged by 9.3% to settle at $96.28 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures soared 9.7% to end at $91.48 per barrel. Since we're talking about crude, which is one of the reasons why, despite strong domestic economic data, our domestic equity indices declined for the fourth consecutive week. What could be on the anvil?
0: I think the markets are looking outwards. The markets are overpowered or overwhelmed by the crude oil prices, Iran, US tensions, dollar index, bond yields. So the markets somehow are just forgetting that the country is doing great guns. We've got 7.8% GDP. So the markets start looking inwards, they'll be happy. But the markets are looking outwards, which I think this is something which is beyond anybody's control. I hope the operators and traders are listening to us and they better start looking inwards.
2: दिल्ली से हमारे आज के अगले श्रोता हैं जय किशन
3: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
3: मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी एज 82 ईयर है और आई एम ए टोटल ब्लाइंड।
0: अच्छा।
3: मैंने भी 5 साल पहले होम लोन लिया था 25 लाख रुपए का
0: जी,
3: HDFC बैंक से
0: जी।
3: अब उन्होंने 10 साल के लिए 21 रेगुलर बांध दी कि 28,000 रुपए पर मंथ आपको जमा कराना है
0: जी।
3: कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल से मैं जमा करा रहा हूँ साहब
0: जी।
3: ये जो मेरा पेमेंट है वो ब्याज में जमा हो रहा है
0: जी।
3: अब पहले स्टेट बैंक से ये होता था कि भाई जो आप किस्त जमा कराई 28,000 रुपए की, पहले महीने आपने 56,000 जमा हुए तो उसका ब्याज कम हो जाता था
0: जी।
3: लेकिन अभी 10 साल तक मेरा अगर ब्याज में सारा पैसा कैपिटल जाता रहेगा तो फिर एंड के अंदर जो है मेरे को कैसे फायदा होगा? ये कटुआ ब्याज तो लगा नहीं मेरे ऊपर, नहीं तो ये तो 24% से भी ऊपर ब्याज लगता है।

0: डॉक्टर साहब
1: जी,
0: तो कृपया ये बताएं कि मुझे नुकसान होगा या मुझे फायदा होगा एंड में जमा कराने के बाद।
1: प्रेम जी जी, पहले तो हमारा भी आपको सादर प्रणाम। आपकी बात ठीक है और ये हाउसिंग लोन की एक टिपिकल प्रॉब्लम है निखिल राजेश, के शुरू में वो ब्याज लेते रहते हैं। मान लीजिए आपका 20 साल का लोन है तो शुरू के सालों में वो ब्याज लेते हैं, और जो बात की प्रेम जी जी जो किस्त होती है आखिर की, उनमें आप तो आप अगर एक किस्त को देखेंगे तो उसमें ब्याज का कंपोनेंट ज्यादा होगा शुरू में, और प्रिंस अजय किशन जी क्षमा करें, क्षमा चाहता हूं, तो उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट एंड में कम होगा, पर शुरू में इंटरेस्ट का ज्यादा होगा और प्रिंसिपल का बहुत कम होगा। तो ये एक टिपिकल जयकिशन जी तरीका है इन लोगों का रीपेमेंट लेने का। आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद नहीं है, पर उनकी उनकी मंशा ये होती है कि लोग लोन लेके कई दफे बहुत जल्दी वापस कर देते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो जल्दी वापस लोन कर रहा है उसको डिस्करेज किया जाए, क्योंकि आप तो उनके लिए ग्राहक हैं, उनको लोन में से प्रॉफिट कमाना है, तो वो चाहते हैं कि लंबे वक्त तक आप बने रहें। तो शुरू में वापस करेंगे तो आपका घाटा है, क्योंकि आप पूरा वापस कर देंगे, जो दिया होगा वो सब ब्याज में चला जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि बिल्कुल जब एंड आने लगता है, लास्ट के 3-4 साल होते हैं, तो उल्टा हो जाता है, आपका प्रिंसिपल ज्यादा जाएगा और ब्याज कम जाएगा। बदकिस्मती से जयकिशन जी ऐसा ही है। मैं चाहूंगा आप एक बार मिल लें बैंक से, हो सकता है आपकी आपकी जो कंडीशन है उसको देख के शायद वो कुछ आपको रिवाइज करना चाहें आपकी किस्त वगैरह।
2: जी, दिल्ली से प्रेमजीत जी हमारे साथ है। प्रेमजीत जी, बहुत जल्दी से आपका सवाल पूछिए।
3: सर, आप सब लोग को हार्दिक बधाई। और गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपसे सीधा ये है कि सर, आपको सुन के लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए हैं।
1: अच्छा,
3: और जैसे आप मेरा द्रोणाचार्य हैं, मैं आपका अर्जुन हूँ, अब लोग ये पूछने लगे हैं सर कि क्या गोल्ड और सिल्वर भी मतलब ब्लैकआउट हो सकता है क्या सर?
1: ब्लैकआउट हो सकता है? ब्लैकआउट का मैं अर्थ नहीं समझ पाया। ब्लैकआउट का मतलब कि लोगों को मिलना खरीदना बंद हो जाने, ऐसा तो प्रेमजीत जी कभी नहीं हुआ, ना हमने किसी कार्यक्रम में इस प्रकार से बोला है ब्लैकआउट हो जाता है। कहीं इन्होंने ये सुना होगा कि आगे विश्व युद्ध होता है तो टेक्नोलॉजी प्रभावित होगी, उसकी वजह से सर्विस
4: कमोडिटी तो नहीं हो
1: सब, पर कमोडिटी जो हार्ड फॉर्म में है गोल्ड सिल्वर, बल्कि वो तो ज्यादा सुरक्षित मैं उसको मानता हूं। और कोई कंफ्यूज नहीं हुए प्रेमजीत जी, कोई कभी कंफ्यूज करने का तो मार्केट मंत्र का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी शंका निवारण होगी।
2: शरद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया,
4: थैंक यू शरद फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी फॉल्स अराउंड 1%। यूएस स्टॉक मार्केट indices display mixed performance this week, and global crude oil prices surge over 9% during the week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
6: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
7: நேரம் 11:40, ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி நிலையம்.

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கிரண் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो से SRCC गए और कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। ये नियुक्ति उनके पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रिय तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी

0: प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश वल्लूरी कामेश्वर राव को पटना उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र वी घुग्गे कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रमुख होंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल होंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा होंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी बनाए गए हैं। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said, India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: Duniya Bharat ko fragile 5 bata rahi thi. Aaj duniya Bharat ko fastest growing major economy banne se hue dekh rahi. Abhi hafte bhar mein hi Bharat ki economy ko lekar कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports are now exceeding 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said, Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said, the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது நினைவில் நின்றவை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கிரண் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है. उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक लंबा सफर तय किया है. श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही. 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है. और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया. इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है. शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है. राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई. डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे. डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की

0: संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ. तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ के स्पिनर श्री चड्डी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said, India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared the smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said, Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as the very special ones and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni had left their mark in every sector. Prime Minister Modi highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Sri Ram and bowed to his enduring vision. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh reached Saudi Arabia yesterday on his maiden 4-day official visit. During the visit, he will meet the Saudi Minister of Human Resources and Social Development, Minister of State for Foreign Affairs and Climate Affairs Envoy, Vice Minister for Environment, Water and Agriculture, as well as other dignitaries. The minister will also meet a large cross-section.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों से ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री डॉक्टर तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉक्टर तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर के IoN डिजिटल जोन सीतापुरा परीक्षा केंद्र के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए NEET PG 2026 की परीक्षा आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जयपुर में 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई और बिना किसी परेशानी के सम्पन्न हुई। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन की एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉ. शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉ. शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुछ 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब की रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ. तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर के ION डिजिटल जोन सीतापुरा परीक्षा केंद्र के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए कल NEET PG 2026 की परीक्षा आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जयपुर में 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई और बिना किसी परेशानी के संपन्न हुई। इससे पहले पिछले महीने की 30 तारीख को राजस्थान के जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर बिजली की आंतरिक समस्या के कारण 2,445 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी नहीं हो पाई थी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार वे चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi